0: 롬데기 lâu phô tôn tu chứ ủa ra
1: tu lomdegi yeng le di
2: aya
1: kwak na mu shuk mu ra ga nong go bi na ngang lap tou na ko na ma su sang ini
0: su me su me se
2: mamang de yeng ga na mu shuk mu na kwak ka mana na u ba adu ga matung de yeng ga na kwak ka mana da na ngang lap tou na ko na ma chu oi ba ko ne
0: mani mani mani nong go bi ma chu ma men hai de se adu ni kwak yung tu si gi se kon si yeng ura ra sa sa si nong go bi ma ku ni ko
2: o si sa
1: di yam wang na di sa ba man di bu
0: hoi se ura kwa ra ta nong go bi na ma ko nem lap pa ma pa ma da sai kwa ku ma ma da nong go bi na marum si ahum da gi na mari pa ko koi da go marum kon ba ma sa yu pa pu nu ma si na nong go bi la ba gi ma thong
2: e e ma amom na marum kon da na la ba na ko li ba
1: adu ni
0: ko li ba ni ne से खाबर की मिसिंग ना थाजना बमदा नियो बिदा हिताक याम ना गाना बना पी मखल अमा नंगो बि मकोन साब दे याउई हेतन थाजने को
2: ओ
0: सिंग साउ द ताउ थरक पम कोन दगी सालमन को बंगा मखल अमा ना पी दो मसक खंग बदगी मधु त ताना ताना दन साई है
2: ओ
0: मधु साब दगी सालमन को बंगा दु दगी लो थाउ ना ने उनसा गे लेना मदी अशोक अपन पाली हेतन थाजन रिबने
2: ओ नंगो बिगि वारी सिदी अइखोय गि दनतना मियम गि दसु याम लेजानी ना
0: यामले यामले नंगो बिगि वारी दी मफम मफम गि याम मरांग काइ लेखो अदुगने वारी अमना नंगो बिन मामानी अदुका लेचिल न मसानी हैब मुसुले बने
2: ओ
1: थोइबा नंग न हाइदोरे इदुना बु याम न पक्सरी ने
0: इसे नंगो बिन नंग कुइने सुरक त्रबम मतम दने मान खोंगली बसि करी हाइनि बनो हाइबदो
3: इमागे लैचिल न खोय बुताब्रा लैचिल न खोय दगि नोंग ओनदुना मालेम द चुथरकतुना खौगंग लब मालेम लाय मबु खौरांग ब कोख हलोला ओय चाचा
4: हौजिकता बिरे नोंगौबि थौरमसि स्कूल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इबोटोंबि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मीमागे तेंग बांगलोइना संदोकचबनी थौरम संदोकतुना तहनजरी बसी आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल देगिनी।

चाहिरक लोनी मथंग दम ताबिरसी सैसक पियासी नसकपा तीसी रंजिताना सैरिंग बमदी ओकेनमक चमना सैरंगबैसै फिल्म अमंबलंबी

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मैं घर चा महुम दस मिक मंगा दे संदूक चरीबा आकाशवाणी फालगी FM संगाई चैनल देगिनी अदम न थोरम ताबीरी बसी।

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Hoi hoi. Ming lai phone ta khang zagi hana.
1: Tam hara we. Takkan ne. Ah mana.
0: Oh mas. Ngasi na han phong bo oi doi ba.
1: Ah, ei kun ti ai ba.
0: Siam nungai ze ko han ba kolara ma. Ai koi da wari sa ba ga phang zabe si so. Anau ba maru ma hen gat li ne koi gi so.
1: Ah.
0: Yani yani wa phang so phang dok piyo do nau na phang jari ba marup ni haina long jari ba simingam ta hana khang jage
1: ah thank you me kai degi ko sem bijenti ne ba
0: bijenti
1: ah ado si thagol me lang di pasoi di langira ta bui opposite ta mun ko pilam bi do
0: mhm
1: ada yang ting ngai ta bai ta ado asa yam bu Aji, cuma hari ni, macam ini kabi, ada cuma kerana sampan yang gaya.
0: Hoi hoi, ekor ini gaya. Tapi masa pukat pira ini, Maya amgi platform moy riba program sida kuah. Aduh, good afternoon ladies. Kita thoram sibu, mama ang dadi sarukaya biki bro.
1: Saya am hari tengah sini apa di pun sih, aham ada.
0: Aham ada.
1: Tengah apa di yang ni buka. Aduh, aji cuma ukang deh, gaya.
0: Oh, message tak ada. Tapi tadi thab dadi ya biki dri riba saruk se.
1: हां
0: मैसेज कुम बाय खै थाबा मतांग सुलै दना ग्वा अदु गुम बदे सुयो
1: हां थे थादे बगा
0: ओ ओ
1: अदु कॉल तो बे सम मा मा गसम तो बुदि तो बा जो चत तम आइने खले बा मु जुला ला जा नंबर जु बो गाइन
0: होय होय होत बो होना रेडी आ नो मदि सोई माई पा ए दो गसे आइ खै गी आ बिजेंटिन उ पीरा बने मयाम द ग्वा
1: आ
0: अदु आइ खै गी थोरम सिदा आहान बदे बुदि वाफम म थंबिरे ताबुं खोक ताबलम बिसे नुंगाइ तबगी अदो गुड आफ्टरनून लेडीज के थोरम सिगा मरी लैने न सुलम दम सिगी नुपीया म ओइना वाहांग म तंग हंगजेगे बको एखैगी मणिपुर गी खुनाई सिदा नुपी न लौरी ब थौदांग से मसे करिनी हाइन लौबिगे बिजेंती इमिलियंगदा
1: यांग तप मणिपुर खुनाई दगेदे बा
0: मणिपुर गी खुनाई सिदा ekhoygi nupi oi basings na lowri ba thaudang se bijenti gi mota kari thaudang lowi ena khanbi ge ba
1: ase yang jaw bu thaudang lowi
0: samlam
1: ge yang jaw thaudang lowi ajin nupi na kwa
0: mhm
1: aji khang de imai bu oi ra nya ga nupi ma poke
0: mhm
1: kai din aji imai na phaba aji ma kam chu le na
0: mhm
1: आगे अब हम मसाज के मधी या डॉक्टर जो नुआए जो ना मसाज नुआए दी इम्यून जो नुआए ना वो देखा है जो तुम अदम देखा है नहीं चौकस पर तुम पौर कमी है मसाज पर ना
0: होय होय
1: हाय हाय
0: याम चुंबो आफ़म ऐसी ना हाँ बर फंग बगी सो ओयरी बने को अदम मतुंग दसो अदम सुंग सो इसो इधर ना बिजेंटी बुंगाई जरम गे कोई सो बिजेंटी गुंबा हाँ बर फंग बने का हरक पमरूप सिंह से वरी साजब दा तुम नुआई जाइए बा
1: ओ
0: खाता रखो दिस
1: आ फटाए
0: ओ
1: वीडियो से फटाना
0: करम बथोरम ने दिहे ननुगाई ने गताबी के
1: असी सी गुड गुड

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून
1: गुड आफ्टरनून
0: होय मैडम थोरम द तराम नक चेरिम बिंग लाइफम खंगजगी
1: आ तो जरे ब इसे मैडम कोई तो थी बोले कै देगी त खेलम भ कोन की शांति लाने में ता
0: शांति वाला तराम नक चेरिंग असी गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम द एम फजब वफ मम पुखत पिर कदव मालिको
1: हेलो
0: तबीब्रा
1: हाँ तब ही मैडम
0: होय होय

नमस्कार कर्मचारी, मैनिंग तो खुंजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गुरु के प्रति आभार प्रकट करने का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। गीतमाला के कार्यक्रम आपके फरमाइश कार्यक्रम में आज का ये पहला गीत उन सभी गुरुओं के नाम जिसके बलबूते पर आज हम यहाँ खड़े हैं, अच्छे बुरे की परख कर पाए हैं। सुनिए ये गीत जसलीन रॉयल की आवाज़ में, फिल्म है हिचकी।

दोस्तों अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म कोयला से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत के लिए हमें मैसेज किया है हैक्रुजम मयालिकाई से बालिन खागेम्बम, खोंगमन जोन 5 से बिशोरजियत निंगोम्बम। श्रोताओं हम चाहेंगे कि आप अपना नाम पता या गीत के बोल जो भी हमें लिखें साफ और सही अक्षरों में लिखें। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

दोस्तों अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म आखिर क्यों से लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में. इस गीत के लिए हमें मैसेज किया है हाइंगांग मयालिकाई से बिजोई सना, जॉन, अनीता, डेनिस और सोनिया ने, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं मयांग लांगजिंग तमांग से सनाहल, फजबी और आकाश. दुश्मन

चाहिए। नुजा साइनो लग तगी ना तुम नहीं राम घूरुगे, नुजा साइनो लग तगी ना तुम नहीं राम घूरुगे। ओइन पाइब सनाबुल, ओइन पाइब सनाबुल याई डबू ताऊ हंगे। ओइन पाइब सनाबुल, ओइन पाइब सनाबुल याई डबू ताऊ हंगे। लग्न रुगे नसीदी सान रुगे

0: रुगे नसीदी, लग्न रुगे नसीदी, लग्न रुगे नसीदी हो लग्न रुगे
1: नसीदी। इसे सितान जखिबुगा लोइनना तांका गसिगे ओइनदी अरिबा मणिपुरी फिल्म मदि मतम से सिंगलान थोकचबा मतांग सिद लोशिनजरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मणिपुरी द मरोइबा पाउ ताबिरसे
2: आकाशवाणी इम्फाल हुजुक फाबुगि मरुवाइ बपाउ इन्डिया सरकारन जे हितारन थुइम पुम फरक बङ मरिलेन न पंगथोकबा थौरम छिनि मनुङ जना ngasi भारत मिडिया वर्कशप थवाल जिल्ला त पंगथोकले केन्द्रीय इन्फर्मेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ मन्त्रालय कि पीआईबी जेनेरल अफिस रिजनल अफिस इम्फाल जिन्दुना खेत्री संगलेन पंगथोकले थौरम छिनि मनुङ जना पीएम सुजा घर मूव बिजली योजना की ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अमदी इम्पैक्ट इन मणिपुर हिरम सिदा टेक्निकल सेशन अमजो पंगथोकनी मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मीडिया रिसोर्स सेंटर ने सिंधुना मणिपुर मायोकनरीबा क्लाइमेट चेंज ना थोनब वाफम सिंगी मतांगदा आकाशवाणी इम्फाल की टीम गो वारी सानबगी तौरम अमा हयंग आकाशवाणी इम्फाल की मेन ऑडिटोरियम द पंगथोकनी थौरम अदुदा डिपार्टमेंट सिगी डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमारा पैटर्न एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट चेंजेस इन मणिपुर हैबसिदा चे पाथोकनी मिकोक थीद्रिंगा द एनआरसी अपडेट तौगदबनी आईडीपी सिंगी वाथोक लोइजिनने मिकोक थीबे यारोय एनआरसी तौदने मिकोक थीबे यारोय हैव अ स्लोगन गलोइने नंगासी इम्फाल वेस की काय सम्पाल एमजम लेकाय याय फथौनी कम्युनिटी होल्ड वकन मिफम पंगतोली वकन मिफम अदो कैंपेन फॉर जस्ट एंड फियर डिलिमिटेशन न छिनबनी कोर्ट जमीन पीदबदगी मराम पुलिस स्टेशन द रजिस्टर तौबा एन डी एन पी एस केस हमगी मखाद मराल सिब माउ कारोंग विलेज दगी नुपी मंगासी सेनापति की टेम्परेरी जेल द संजर खरे हाइरी वन नेशन वन इलेक्शन की आईन येंगछिनब सेंखिब जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी की मतम लोकसभाना संसद की चही असी निंगथम मिपम की अरुब जयोल की आहन बनुमित फव संदोखरे मसुम नीट की वाथोकता वाकट खोंजंग चंगसिन की बमा हिरोसिंग की मतकता पुलिस ना चथा की बथोंग की मतांग द विरोधी ना चरांग न बदगी मजिराइज सभा की मिफम नुथिलपुंग अनि फवे थोखरे पाउलो जरे

अंगान यवा चाउन कपक पदा समनुडा खुलाक भी करी उपाय दिले जे दबन अंगांग मधार छे जे गोले मतम सिद्ध करी हाय रखली

0: सिक्षिन भी गदबा नापी माहन बंगंबा मसल सुन या और बसाथी दी संगी मको किए पने काउबी रगनु लोमी सिंगे मरु साथी
1: एक्जोटिका एक्जोटिका लोमी ये अनोबा याई फपाउजेल एक्जोटिका हाईबा तिलहाक हिदाक असिना मना ककपी मना चिकपी मना कोंचिन भी मरा पुंबी उसिंग जामान भी मरिक उतोंग नुंगी वैकुप मान भी अमदी अतै अतै लौमी नमी पाई नरीब तिलना कयादगी नाथोपंगमी हाईरिब तिलहात हिदाक असिना लोफोंबु कुईना तिल सिंगदगी नाथोपद नत्तना फौबुसु मपांगन कलखनमंगमी सावोंगसु फजहली सिजिनबियु एक्जोटिका अदोमगी मनाक नकप तिलहात हिदाक योनफम सिंगद फंगली एक्जोटिका एक्जोटिका एक्जोटिका
2: Gold Coin GR. Lomi ki yai panna ba GSP Crop Science Limited na. Lomi ki phok thok bu chada tara da ki tara manga phau bhe hengat han ba ngam laba. Acha uba khudol am tambira re. Gold Coin GR. Gold Coin GR de yau riba seaweed extract, humic acid, am di amino acid na. Hau pambi bu masani tina pokhali, gaitin, am di keolin asina. Hau maru ning tina chang ba ngam ali, hau ham chelan de. Lo sangam amada, supna ki kilo hum khat chai thok piyo. Gold Coin GR. Fang fam AR Agro kai sampat am di adong ganak na ba til had hidak gun from sing
3: Akasbani Imphal Hauje namitang ki pung taret makai tare Manipuri da pau tabirase
4: Akasbani Imphal Wengbom Rajesh na pau pajari anbada maroi ba pau Raju ki menteri mandal ki mipham ngasi pangtuk tu na cakot thorang ki thabak thoram sing han na yeng sin kre. None jilagi bitiang kulda ngasi ayuk security force ka kutthok na bada Naga village guard amasire

0: जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया।
1: खनन नब अदर सरुक यारदना लोकसभा द विरोधी लुसिंगबा राहुल गांधी ना लेबाग असि की एजुकेशन सिस्टम असि याम नंबर गुन लेतबा अम ओरे हाइना फोंगतोकी मांगनाय नीट यूजी परीक्षा पांगतोपद चंगली बसेनफम असि लेबाग असि की एजुकेशन की बजेट तगी हेले लोकसभा की मिफम असि अनिरक येथो रुबा मतुंग बिल्लदु पास रुबा मतुंग द सभा की मिफम अहेंग फावबा येथोकी राज्य सभा नंग असि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुंतरुक पास तौखरे बिल असिना बंदे मातरम्बो नेशनल एंथम जनगणग मानना चप मानना आयन की ओबा प्रोटेक्शन पीनबा हायरी बिल असिगी मतांग पाखुम पीरदुना केंद्र की गृह राज्य मंत्री नितायनंद राय ने हाय बिल अस सेमदोलीबा असि सुपनतगी लेजिस्लेटिव की अवनब नते मांगनाय कुमजा लिसिंग अम चमापन हुमबुद्रा माथोयदा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक की मखादा जाति की फिराल संविधान अमसुंग जाति की इसैबु इकाई खुमनन बने आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबिरी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान मथंग थागी अनिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हौदोलगनी लैबाग सिन बथुंगना चयोल तरा चथगदबा जन भागीदारी यहु असी माई भारत प्लेटफॉर्म ना लमजिंगनी थौरांग असिना लैबाग असिबु निशा सिन्दब लैबाग अम ओहेनब नहा सिंबु अमत ओइना मिशन अम ओइना चंगछिनबनी मसिद म्यामबु हेन बाप तानब जाति कांगलुप सिंग यहोनब होनगनी केंद्र की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्रालय हाय कैंपेन असिद माई भारत वॉलंटियर सिंग NSS वॉलंटियर सिंग यूथ क्लब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यौना तोंगान तोंगानब संस्थान क्यामरुम सरुक यागनी कैंपेन असि लैबाग अस निशा की मायक्त सथब नहा सिंह लमजिंब ख्वाई की अचौब खोंजंग मंत्रालय ने हाई मथंग चयोल चाम नोमाइजिंग नुमित कुदिंग नहा सिंह लमजिंगदुन लैबाग सिंब थुंबद हक्सांग फन लेनब म्यामबु खंगनब थौरों क्यामरुम पांगथोकनी नीट यौना कंपिटिटिव एग्जामिनेशन सिंह पेपर लीक होब अत असोब अरानब क्या तौब की केस खोंजेल यांगना विचार तौनब पटना हाई कोर्ट पटना लखीसराय पूर्णिया फास्ट ट्रैक कोर्ट लिंखत्े कोर्ट जज हापे हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट लिसिंग अनि कुनमरी की मखाद रजिस्टर तौरप केस विचार तौगनी था उनकी मनुंग राय पीब गमनब कोर्ट चार्जशीट हेक थांगलपगा नुमित खुदिंग हियरिंग चथगनी हौजिक सानबगी पाव नाउरेम विक्टर दगी
2: चाम कुंथ्रामा सुब इंडियन ओयल दुरान कप की इम्फाल लेक की मैच अमद हयें एफ सी रेंगदाई इंडियन नेवी फुटबॉल टीम का सानगनी इम्फाल की खुमलंपाक मेन स्टेडियम दा ग्रुप डी की सानगदब मैच असी नुंथिल पुंग मरी दगी हौगनी ग्रुप असी की ngarang sanakiba match da Neroka FC amsung Trau FC panjal chanaba ngamdana draw chatki tournament असी की ग्रुप सी की मैच अमद हौजेक रांची की बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम दा इंडियन एयर फोर्स फुटबॉल टीम का डिफेंडर्स एफ सी का सानरी हौजिंग हा की ममांग फाउब दा टीम अनिना पंजल अमत चनब ngamdri NGL नोंपोक लौरेंबम सिंधु पांगथोकलीब तरेट सुब लंबा मयूम नोंथोन फुटबॉल फेस्टिवल की सानकीब अहान क्वार्टर फाइनल मैच सनामही एफ सी वांगोयना BYFY विष्णु नहा यायरीपोकपु पांजल पेनाल्टीद पांजल मरी अहुम थोयख्रे श्री श्री गोपाल देव कांकुन सिंधु चथरीब तरा सुब लेट मंगसाताबम इबोयाइमा एंड पुनियाबती मेमोरियल लेग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनि कुंतरुक की सानकीब मैच वालीदा वबगाई कांखुना खुंद्रापम कांखुटपु पांजल कुनीथोय तरा मरीद थोयख्रे ग्लास्को चथरीब कॉमनवेल्थ गेम्स भारत सना की तकमान अनी लुपा की तरह सेंजन की अहम पुनः तकमान तरह निथोय फंगदुन मपनसु उमफम ऑस्ट्रेलिया सना की तकमान कुंथ्रा मंगा लुपा की तरह निपान सेंजन की कुंतरेट पुनः तकमान मरीफु फंगदुन अहानबदरी कनाडा सना की तरह हुमदोय लुपा की तरह सेंजन की तरह निथोय पुनः तकमान कुंथ्रा मंगा फंगदुन अनी सु उमफम राजेश
1: थगचरी विक्टर अरब मरब पाव राज्य की मंत्रिमंडल की मिफम पांगथोक्तुना चौखट थौरांग की थबक थौरम सिंह हन्ना येंसिनक्रे नोने जिला की बीतियांग खुल्द अयुक सेक्यूरीटी फोर्स का कुथोक्नबद नगा विलेज गार्ड अम सिरे मियो क्या अशोक अपन नंगले राज्य से जिला अयम लागली नुमित खरनी अस नोंग चुगनी है लोकसभा ने द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनी कुंतरुक पास तौखरे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान मथंग थागी अनिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हौदोलगनी पाव लोजरे
3: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबी रसी मतम की वाफम दा दुरान कप इंग्लिसिंग अनी कुंतरुक आई बी डॉक्टर उमा मयिंगबम रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर डीएम कॉलेज ऑफ साइंस धनमंजुरी यूनिवर्सिटी

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ई पाव लीला ड्रामा तुंगान तुंगान बथोरम सिंह असिना लैचलोइदुन सेमजरीबा आकाशवाणी इंफाल की संगाई चैनल की नुमिदांगी थोरम परिंगी ताबिरिबसी आकाशवाणी इंफाल हौजिक नुमिदांगी पुंग मापल तारे मणिपुरी द पाव ताबिरसी।
4: आकाशवाणी इंफाल वहिंगम राजेश न पाव पाजरी। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल ईस्ट जिला की अंड्रो पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सांता बाजार की नुपी अनी खुलाई पुतोक पुसिन तौबगीदमक फारे हरी। मणिपुर पुलिस की पाउन है मकोय अनी ने योनब होनरंब हैंड ग्रेनेड अमसु फागले। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा नॉर्थ एओसी मियोय अमा फारे महाक ममांगद नॉर्थ एओसी मियाम तिनब मफमद नोमई कापसिलंबद चेनब मिसकनी हरी। मांगोंद की मैगजीन याव 0.45 एनपीबी पिस्तोल काप याब मरु मंगा फंगले हरी। सेक्युरिटी फोर्स ने इम्फाल ईस्ट की पोरमपा पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा खुराई हैक्रू मखोंद की केसीपी नोंद्रेन खोब की नुपी काडर अमा फारे। बिष्णुपुर जिला की नंबोल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लेमा पोपम मयाई लेकाई पीपल्स यूनाइटेड यूथ अलायंस की मियोय अमा फारे महाक मियाम दगी सेल खाइब चेनबनी हरी। मरी सुब इंडिया रिजर्व बैटालियन सिंधुना खुरखुल सरदार पटेल हाई स्कूल लमतु सेंबगी थौरम अमा पांगथोक्रे। बैटालियन कम्युनिटी पॉलिसिंग की थौसिल मखादा पांगथोक्किब थौरम अदुदा स्कूल अदुदा आरओ वाटर प्यूरीफायर अमसु खुसिनकी। क्वाकैथल सब डिविजन वन की मखाद 11 केवी ईस्टर्न टू फीडर कौनब मफम सिंह हयें अयुक् पुंग तरादगी नुंथिल पुंग मरी फाव मई ममगनी हरी। फीडर असिना कौनब सगोलबन वहेंबम लेकाई सगोलबन तेरा अमुदोन अखाम लेकाई मैनो लेरक मोयरांग लेरक मबुदोक मंत्री लेकाई थांगजम लेरक विजय गोविंद इंगुदम लेरक अमसुंग पुख्रमम लेरक की मफम सिंह मई फंगलोय हरी। अमरोम यूरेंबम सब स्टेशन वेस्टर्न फीडर मई पीरब पाचोई पार्ट फोर सगोल तोंब अवांग खुनौ कौथौजम खुम्बों ngairangbam मोयदांगपोप खाइडेम हैक्रूजम कामोंग अवांगजीरी खाजीरी सजीरोक कैथेल मामबी की मफम सिंह हयें अयुक् पुंग मापनदगी नुंथिल पुंग मरी फाव मई फंगलोय हरी। असम राइफल्स सिंधुना टेक्नोपल जिला की मोरेद अब्दुल्लम ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मयाई काब निशा की मायोग लानतेना नहा सिंह हेन शक्ति पीनब पांदम आउटरीच प्रोग्राम अमासी पांगथोक्रे। थौरम असी पांगथोप की मरुएब पांदम सेंटर असद मियोय सिंबु मसा मऊ फन लेनब समाज असद अमुक हन्ना इज्जत लेने हिंब यानब की पांदम पांगथोपने। सेंटर असद मियाम की नुमित कुदिंग की याइफनब की दमक असम राइफल्स ना साना खोनब की पोलम सिंसु खुसिनकी हरी। इंडिया मेट डिपार्टमेंट हरी छत्तीसगढ़ अमसुंग अवांग थंब ओरिशा की मफम क्यादा डीप डिप्रेशन लेबन मरम ओयदुना नोंचुप थंब मध्य प्रदेश अमसुंग गुजरात की मफम क्यादा हयें अमसुंग हंगचित अकनम नोंग चुगनी। विभाग असिना हाई लाखलिब नुमित हुमनी मरीनी असिदा अवांग नोंचुप अमसुंग मयाई थंब भारत की मफम क्यादा कुमगी नोंग मतम चाना चुरगनी। मणिपुर की जिला अयामदा लाखलिब नुमित खरनी असिदा नोंग चुगनी हरी। इंडिया मेट डिपार्टमेंट इम्फाल रीजनल सेंटर की पाव मतुंगिना हयें तमेंगलोंग सेनापति कांगपोकपी उख्रुल जिरीबाम नोने चांडेल चुराचानपुर अमसुंग फेजोल की मफम क्यादा अखाक अराव लोनना नोंग चुगनी हायरिब फिवम असी लाखलिब नुमिनीनी असिदसु अहोंब लैरोय हरी। ngasi tamenglong senapati kangpopi ukrul kamjong jiribam none bisnupur chandel churachanpur amasung phejol gi mapham kyada akhak araw ga loinana nong chugani hari। glasgow da satari ba commonwealth games da ngasi bharat ki boxer ahum Arundhati Chowdhury, Sakshi Chowdhury Amasung, Sachin Siwas semi-final Chankre. Lablina Borgohai, Priti Pawar, Priya Gangas Amasung, Jadumani Singh, Hanana semi-final Changduna, Bharaki Takaman Amamam Soidana, Fanglagani. Ngasi Sanakiba Nupagi Meter Lising Taragi Lamjelda Gulbir Singna Lukpagi Takaman Loki Nupigi Kilogram Humfuma Pangi Webitingda Harjinder Kona Lupagi Takaman Loki Game Sasita Medal Telida Bharatna Sanagi Takaman Ani Lupagi Taret Senjengi Ahum Puna Takaman Taranitoi Pangduna Mapan Subada Lady Australiana Sanagi Takaman Kuntramanga Lupagi Taranipan Amadi Senjengi Kuntaret Puna Takaman Marpu Pangduna Ahanbada Lady Canada na sanagi tarahumdoi lupagi tara amasung senjengi tarani toy puna takaman kuntramanga pangduna anisuba mapamda lady sama kuntramanga suba indian oil duran cup ki imphal lake ki match amada hayeng fc rangdai ga indian navy football team ga sanagani imphal ki khuman lampak men stadium da group d gi sanagada ba match asi nungthil pungmari degi haugani tournament asi ki group c gi match amada haujik ranchi gi birsa munda football stadium da indian air force football team ga defender fc ga sanari haujik pawada indian air force football team na panjil ani amada mangjil thari pau loijare

ताबिरे ममल नाइद्रब थमोई फिल्म असिदगी आरबिन अमदि पुष्परानी गे पुनब खोंजिलदा बिनोरंजन ओइनामना सेरिंग बमदि टोनी हिबमना सेरांग बेसे पोंफम असिदा दोमगी दमक पुजरकली तोंगान तोंगान बा मणिपुरी फिल्म असिदगी

बिल्कुल, दिल लगाने की भी और दिल की बातें सुनने के लिए दिलबर भी होना चाहिए। तो बस आ गई हूँ मैं आपका मनपसंद कार्यक्रम हर श्रृंगार लेकर, जहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ दिल की बातें, क्योंकि हम आपकी बातें सुनते भी हैं और उन बातों का जो हम इजहार है वो अपने गीत मीठे मीठे गीतों के जरिए करते भी हैं। तो ये जो गीत आपने सुना वो है साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ में, नदीम श्रवण का संगीत, समीर का लिखा ये गीत और फिल्म सैनिक। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ रितिका और बने रहिए हमारे कार्यक्रम हर श्रृंगार के साथ।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम है आपका अपना मनपसंद। जी हां, हर्ष श्रृंगार और मैं हूं आपके साथ ऋतिक।

दिव्या भारती और ऋषि कपूर पर फिल्माया ये गीत आपने सुना, नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज। हर श्रृंगार में आज बस इतना ही, 11:10 पर होगी आपसे फिर से मुलाकात गीत मेरे मनमीत में। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के

0: पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम एक मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज पूरे दिन हल्की हल्की बारिश होती रही तो खोया खोया चांद इन बादलों में ज़रूर होगा, है ना। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत, और एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। '60 में आई फिल्म काला बाजार से आपने ये गीत सुना, एसडी बर्मन का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज, और इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं रितिका और कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत।

तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, क्योंकि भाई अब आ चुकी हैं स्टूडियो में अंजू निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्यम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में

0: अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान की दो समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थीं, जिसके जरिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने 8 अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है, जिनसे IRGC को मदद मिलती है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill, proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
2: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: Dr. Singh criticized Leader of Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. In Odisha, heavy rains and rising rivers have triggered a severe flood situation, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. The administration has intensified rescue and relief operations as the flood situation continues to remain critical. Meanwhile, in Assam, the relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Shivasagar, Golaghat, Charaidev and Jorhat. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma and assured all necessary assistance to the flood-hit state. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall today over

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 12:11 और 24 सेकंड। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

नींद से कह दो कि अब हमसे कोई वास्ता ना रखे, नींद से कह दो कि अब हमसे कोई वास्ता ना रखे, क्योंकि दिल ने अब जागने का नया बहाना जो ढूंढ लिया है।

आंखें बंद करके बस तुम्हें महसूस करते हैं इस तरह, आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करते हैं इस तरह, जैसे रूह में उतर आए हो तुम किसी ख्वाब की तरह।

देख लो तसल्ली हमारे दिल की, देख लो तसल्ली हमारे दिल की कि दिल ने फिर कहा है तुम आओगे जरूर, यही भरोसा हर सांस में रहा है।

अच्छा एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मोहब्बत है किसी से तो इसे छुपाते क्यों हैं, ये जानते हुए भी कि धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी हो, यानी पता तो चल ही जाता है ना इस दुनिया को, या यूं कहें कि मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि मालूम होता है कि नहीं मालूम होती है।

लोग तो वजह ढूंढते हैं जीने की दुनिया में, लोग तो वजह ढूंढते हैं जीने की दुनिया में, और मेरे जीने की वजह तो बस तुम्हारा साथ है।

दोस्तों कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के सम्मान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्योग और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें JRD टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप, निवेशक और नीति निर्माता शामिल होंगे। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान की 2 समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थी, जिसके जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने 8 अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है, जिनसे IRGC को मदद मिलती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। विश्व चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की एलिस ग्लिन को हराया। इस जीत के साथ जैस्मिन ने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Ibrahim. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases. Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. The government has said that the country became free from left-wing extremism after nearly 6 decades of violence, which was once considered one of the biggest threats to the internal security. In reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Home Affairs, Nityanand Rai, said that this has been achieved with resolute implementation of the National Policy and Action Plan to address left-wing extremism 2015 and the coordinated efforts of centre and state governments. He informed the House that at present, no district is categorised as LWE affected. Mr. Rai added that the number of Naxal-affected districts reduced from 126 to 90 in April 2018, 70 in July 2021, 38 in April 2024, 8 in December 2025, and 0 in March 2026. Government has said that it has taken significant steps to strengthen the forensic ecosystem in the country through various schemes, including Nirbhaya Fund, having consolidated financial outlay of more than 4,800 crore rupees. In a written reply in the Rajya Sabha, Minister of State for Home Bandi Sanjay Kumar informed that a state-of-the-art DNA analysis and research and development facility has been set up at the Central Forensic Sciences Laboratory at Chandigarh. He said machinery and equipment have been upgraded in the Central Forensic Sciences Laboratories, including the new disciplines of forensics in narcotic drugs and psychotropic substances, digital forensics, DNA forensic analysis, and forensic psychology. In Odisha, heavy rains and rising rivers have triggered a severe flood situation, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. The administration has intensified rescue and relief operations as the flood situation continues to remain critical. Meanwhile, in Assam, the relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Sivasagar, Golaghat and Charaideo and Jorhat. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall today over Madhya Maharashtra and West Madhya Pradesh. IMD also predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Lakshadweep. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, 9 Indian boxers have assured medals for the country after sealing semi-final berths. 5 pugilists, including Arundhati Chaudhary in women's 70kg, Sakshi Chaudhary in women's 51kg, Sachin Sivach, men's 60kg, Ankush Panghal in men's 80kg semi-finals and Narinder Berwal in men's 90+kg categories registered victories today. And that is the end of this news bulletin.

समय हुआ है 1:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुहानी का। एक बार मैं अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जरा देखो रात खामोश है और ये पूर्णिमा का चांद चुपके से कह रहा है कि कोई दूर बैठा आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही यादों में बह रहा है।

तो रात भर उसके घर की मुंडेर पर भी चमकता है ना, तू तो रात भर उसके घर की मुंडेर पर भी चमकता है। ए चांद बताना, क्या वो मेरी तरह भी करवटें बदलता है?

कोई सवाल मत पूछना आज मेरी उदासी का सबब, कोई सवाल मत पूछना आज मेरी उदासी का सबब, बस सीने से लगा लो ताकि धड़कने सुकून की सांस ले सकें।

लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तुम्हारी चाहत के आगे, लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तुम्हारी चाहत के आगे, बस धड़कनें धीरे से पूछती हैं क्या हम इस बेपनाह मोहब्बत के काबिल हैं।

दूरी अब सहने की हद से गुजरने लगी है, दूरी अब सहने की हद से गुजरने लगी है, कि आप ही जाओ कि ये दिल की धड़कन अब बिखरने लगी है।

न जमाने की परवाह न जन्नत की चाहत है, न जमाने की परवाह न जन्नत की चाहत है, तेरे कंधे पे सिर रख कर कटे कुछ पल, बस यही दिल की राहत है।

दोस्तों आप सभी कहेंगे कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और समाचारों के बाद यानी 2:10 पर रात सुरमेरी लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी मैं. तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय के अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राजकोष विभाग के अनुसार इन प्रतिबंधों के अंतर्गत 8 तेल टैंकरों और 10 कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर दबाव डाल रही है और उनसे अनिवार्य समुद्री बीमा लेने के लिए मजबूर कर रही है। अमेरिका ने कहा है कि यह कदम ईरान के अवैध तेल व्यापार और गुप्त जहाज बेड़े पर दबाव बढ़ाने की उसकी नीति का हिस्सा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेश ने ग्लासगो में 20.46 सेकंड में रेस पूरी कर जीत दर्ज की। उन्होंने कैमरून के इमैनुअल एसेमे को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ashish Abraham. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases. Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said, the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. The government has said that the country became free from left-wing extremism after nearly 6 decades of violence, which was once considered one of the biggest threats to the internal security. In reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said that this has been achieved with resolute implementation of the National Policy and Action Plan to address left-wing extremism 2015 and the coordinated efforts of centre and state governments. He informed that the House at present no district is categorized as LWE affected. Government has said that it has taken significant steps to strengthen the forensic ecosystem in the country through various schemes, including Nirbhaya Fund, having consolidated financial outlay of more than 4,800 crore rupees. In a written reply in the Rajya Sabha, Minister of State for Home, Bandi Kumar Sanjay, informed that a state-of-the-art DNA analysis and research and development facility has been set up at the Central Forensic Sciences Laboratory at Chandigarh. He said machinery and equipment have been upgraded in the Central Forensic Sciences Laboratories, including in the new disciplines of forensics in narcotic drugs and psychotropic substances, digital forensics, DNA forensic analysis, and forensic psychology. In Odisha, heavy rains and rising rivers have triggered a severe flood situation, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. The administration has intensified rescue and relief operations as the flood situation continues to remain critical. Meanwhile, in Assam, the relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Sivasagar, Golaghat, Charaideo and Jorhat. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall today over Madhya Maharashtra and West Madhya Pradesh. IMD also predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Lakshadweep. At the Commonwealth Games, India scripted history in para-athletics by securing a historic 1-2 finish in the men's 100-meter T47 final, with Dilip Mahadugavit winning gold and Mohammad Basil Morsanganath claiming silver. The gold was India's third at the Glasgow Commonwealth Games, following Mirabai Chanu's victory in the women's 48kg weightlifting event and Sharmila Dhankar's triumph in the women's shot put F57 para-athletics category. Earlier, Murali Sri Shankar becoming the country's first double medalist in Commonwealth Games with a long jump silver. The other Indian in the competition, Lokesh Satyanathan, finished fifth with a best jump of 7.97 metres, achieved in his opening attempt. With this, India's overall medal tally currently stands at 15, comprising 3 gold, 9 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 31 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूं अंजू, आपके साथ लेकर आई हूं बहुत ही खूबसूरत गीतों भरा कार्यक्रम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी तो ठीक से तुम्हें आंखों में उतारा भी नहीं था, अभी तो ठीक से तुम्हें आंखों में उतारा भी नहीं था कि तुम घड़ी की सुइयों को देखकर उठ खड़े हुए। ये तो हमारा करार नहीं था।

रुक जाती है धड़कन तुम्हें अपने पास पाकर, रुक जाती है धड़कन तुम्हें अपने पास पाकर, संभालो मुझे कहीं खो ना जाऊं मैं तुमसे दिल लगाकर।

मंजिल की तो कोई चाहत नहीं, सफर खूबसूरत होना चाहिए। मंजिल की तो कोई चाहत नहीं, सफर खूबसूरत होना चाहिए। तुम कदम से कदम तो मिलाओ, हम इस मोहब्बत को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।

तेरी चाहत के नशे में चूर हैं हम, अब संभलने की बात ना करो। तेरी चाहत के नशे में चूर हैं हम, अब संभलने की बात ना करो। इस बेखुदी में जो सुकून है, उससे बाहर आने के लिए होश में आने की जिद हमसे ना करो।

दोस्तों अब होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेव. कार्यक्रम हमराही लेकर 3:10 से मुझे अनुमति दीजिए. जल्द मिलूंगी. अपना ख्याल रखिए. नमस्कार. शुभ रात्रि.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। बढ़ने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का मात्र एक दिखावटी प्रयास है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम कर लिए हैं। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का गेम्स रिकॉर्ड और अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंग गनकात ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया। ये ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के 3:11 और 19 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब दिल में कोई ख्वाहिश जागती है तो वो एकदम से नहीं बल्कि बहुत नज़ाकत के साथ धीरे धीरे परवान चढ़ती है। तो आइए इस खामोश फिजा में थोड़ा रंग भरते हैं और धीरे धीरे मचलते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनुपमा से अभी आपने गीत सुना। आंखों की बातें तो बस आंखें ही करती हैं, आंखों की बातें तो बस आंखें ही करती हैं, दिल की तड़प को तो बस धड़कने समझती हैं। जब बात चले मोहब्बत और हसीन निगाहों की, तो फिर ये आंखें हर राज बयां करती हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से अभी आपने गीत सुना। आंखों में तेरी सूरत, दिल में तेरा ख्याल है। आंखों में तेरी सूरत, दिल में तेरा ख्याल है। तू ना हो साथ तो हर लम्हा मलाल है। मत छोड़कर जाना कभी इस हम सफर को, तेरे बिना तो ये जिंदगी ही बेहाल है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आया सावन झूम के से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म तीसरी मंजिल से।

दोस्तों कहते हैं कि जब लव्स कम पड़ जाते हैं तब दिल की धड़कनें बोलने लगती हैं और जब दिल किसी को सच्ची शिद्दत से याद करता है तो वो पुकार हवाओं के जरिए सीधे चाहने वाले के दिल तक पहुंच जाती है बिल्कुल इस गीत की तरह जो गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म है ज्वेल थीफ

मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में फिल्म काला बाजार से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यादें किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। जब सन्नाटा गहराने लगता है और हवाएं थम जाती हैं, तब दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है। वही पुरानी यादें जो दिल के गुलशन में हमेशा खिली रहती हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म पतिता से ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम से अभी आपने गीत सुना। धड़कने थमती नहीं जब तुम पास आती हो, धड़कने थमती नहीं जब तुम पास आती हो, खामोश लबों से भी तुम बहुत कुछ कह जाते हो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है मेरे हमदम, बिना छुए भी तुम रूह

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म आवारा से ये गीत।

दोस्तों इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का मात्र एक दिखावटी प्रयास है। जापान की आबादी लगातार घट रही है। जापान के गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में जापानी नागरिकों की आबादी पहली बार 12 करोड़ से नीचे आ गई है। 1 जनवरी तक जापानी नागरिकों की संख्या करीब 11 करोड़ 97 लाख दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9,17,000 कम है। ये 1968 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में घटती जन्म दर के कारण जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज शानदार प्रदर्शन किया। खेल के 7वें दिन पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीत लिए। दिलीप महादु गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहम्मद बासिल मोर्सिंगन काथ ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Ibrahim. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases. Dr. Singh criticized leader of the opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. The government has said that the country became free from left-wing extremism after nearly 6 decades of violence, which was once considered one of the biggest threats to the internal security. In reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said that this has been achieved with resolute implementation of the National Policy and Action Plan to address left-wing extremism 2015 and the coordinated efforts of centre and state governments. He informed the House that at present, no district is categorized as LWE affected. Mr. Rai added that the number of Naxal affected districts reduced from 126 to 90 in April 2018, 70 in July 2021, 38 in April 2024, 8 in December 2025, and 0 in March 2026. Drone strikes ignited fires on 2 natural gas vessels at an Egyptian port yesterday, a maritime security firm said, as the US-Iran war flared on multiple fronts in the Middle East. The attacks were on a US-owned floating storage facility and a Greek-owned tanker. No injuries were reported from the fires, according to the Egyptian Petroleum Ministry, which gave no information on the cause. It was not immediately clear who was responsible for the strikes. Egypt, a close US ally and regional mediator, is one of the only countries in the Middle East to have been spared from direct military action during the war. India produced a memorable 1-2 finish on the track at the Commonwealth Games 2026 as Dilip Mahadu Gavit stormed to gold and Mohammad Basil Morsingkanath claimed silver in the men's T4700m on day 7 of the Games in Glasgow. Gavit produced a blistering finish over the final 30 metres to clock a Commonwealth Games record of 10.71 seconds and emphatically clinched the gold medal. Fellow Indian Basil was equally impressive, timing 10.83 seconds to secure silver after edging England's Kevin Santos 10.85 seconds, who settled for bronze. The medals were India's second gold and third medals of the day after long jumper Murali Sri Shankar had earlier opened the day's account with a silver in the men's long jump. The silver medal also made Sri Shankar the first Indian men's long jumper to win 2 Commonwealth Games medals. India now ranks at 8th position, taking the country's overall tally to 15 medals, 3 gold, 9 silver and 3 bronze. In Odisha, heavy rains and rising rivers have triggered a severe flood situation, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. The administration has intensified rescue and relief operation as the flood situation continues to remain critical. Meanwhile, in Assam, the relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Sivasagar, Golaghat, Charaideo and Jorhat. And that is the end of this news bulletin.
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत।

दोस्तों, सावन माह की शुरुआत हो गई है और सावन की फुहार जो सिर्फ जमीन को ही नहीं हमारे दिलों को भी भिगो देती है। जब हरी भरी टहनियों पर बूंदें गिरती हैं तो लगता है जैसे कुदरत खुद मुस्कुरा रही हो। आइए सावन को और यादगार बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जो गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है आया सावन, झूम के इसे।

दोस्तों, जिंदगी के जो भी पल हैं उनको हंसी खुशी के साथ जिए, क्योंकि बाद में समय निकल जाने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर आपने गांव की जिंदगी देखी हो या कभी गांव में रहे हो तो आपको सोचकर बड़ा अच्छा लगता होगा। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और वहां का सादगी भरा माहौल दिल को छू जाता है। आइए सुनते हैं चितचोर फिल्म से के जे येसुदास की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रोटी से।

दोस्तों, रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, पर अगर मन में जुनून और हौसला है तो जीत बिल्कुल निश्चित है और फिर हर रास्ता आसान हो जाता है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म शोला और शबनम से अभी आपने ये गीत सुना। सच की राहों पर भले ही भीड़ थोड़ी कम होती है, बिल्कुल दोस्तों, सच की राहों पर भले ही भीड़ थोड़ी कम होती है, पर उस रास्ते पर चलने वालों की शान ही कुछ और होती है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म तीसरी कसम से ये गीत।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म यस बॉस से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर हो जाता है।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भीगी पलक से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म भीगी पलकें से आप ये गीत सुन रहे हैं। और दोस्तों, आपका और हमारा साथ भी ऐसे ही हमेशा बना रहे, पर अब साथ छोड़ने का वक्त आ गया है। हम आपसे मिलते रहेंगे, पर अभी अरुणिमा से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूँगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु तथा मध्यम उद्यम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि अनुसंधान विकास नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहले देश के नवाचार तंत्र को और मजबूत करेंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:11 और 12 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी की इस प्यारी सी सुबह में मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस प्यारे से मौसम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से जो गाया है अनूप जलोटा ने।

दोस्तों किसी का साथ अगर साथ में है तो मंजिल को पाना बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर किसी का साथ नहीं है तो सफर काटे नहीं कटता।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम है राही प्यार के से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, गम खुशी ये सब जिंदगी का हिस्सा है, पर हम दुख आने पर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर दोस्तों, अगर दोनों में तालमेल बिठा लिया जाए तो कितना अच्छा हो। आइए सुनते हैं बातों बातों में फिल्म से, पर्ल पद्म से अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम पम